0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है

0: के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: कार्यक्रमात आता ऐकणारा आहोत दादागिरी या चित्रपटामधलं गीत। गीतरचना हसरत जयपुरी यांची, ऐकूया अनुराधा पौडवाल यांच्या आवाजात। संगीतकार अन्नू मलिक।

0: के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: मराठी चित्रपट गीतांच्या कार्यक्रमात आता ऐकूयात पाठलाग या चित्रपटामधलं गीत। गदी माडगुळकर यांच्या गीताला संगीत आहे दत्ता डावसेकर यांचं, आणि हे गीत आपण ऐकणार आहोत आशा भोसले यांच्या आवाजात।

देवेंद्र गोगोई द्वारा लिखित निर्मित व दिग्दर्शित सिनेमा चिराग कहाँ रोशनी कहाँ यात राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, मदन पुरी, संगीतकार रवि, ओए ये दुनिया देख ली, हे गाणं पण ठीक ठाक होतं।

या सिनेमाचं शीर्षक गीत पण छान होतं, अजब तेरी मालिक तेरा जहां चिराग कहां रोशनी कहां।

इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें

0: पृथ्वी शहनाई, विजय भट द्वारा दिग्दर्शित यात राजेंद्र कुमार, अनिता गुहा व अमिता, संगीतकार होते वसंत देसाई आणि गीतकार भरत व्यास. अखियां भूल गई है सोना, दिल पे किया है जादू टोना.
1: क्या हो गया है तुझे? अरे बेचारी के दिन का चैन, रातों की नींद हराम हो गई है. अखियां भूल गई है सोना, दिल पर हुआ है जादू टोना. हाय शहनाई वाले, हाय शहनाई वाले.

साया था कोई ना सरगोशी, आहट की ना जुम्बिश थी कोई। हाँ देर तलक उस रात मगर बस एक मकान की दूसरी मंजिल पर एक रोशन खिड़की और एक चांद फलक पर

कुछ ऐसी एहतियात से निकला है चांद फिर, जैसे अंधेरी रात में खिड़की पे आओ तुम। क्या चांद और जमीन में भी कोई खिंचाव है?

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुँचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: जस्टिस चौधरी या चित्रपटामधलं किशोर कुमार आणि आशा भोसले यांनी गायलेलं इंडिवर ह्यांचं गीत आता ऐकूयात। संगीत दिलं आहे बप्पी लहिरी यांनी आणि हे गीत आहे जस्टिस चौधरी या चित्रपटामधलं।

0: ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
1: इसमें सर्वच गाणी छान होती, ही गाणं जरा जास्तच लोकप्रिय होतं लता मंगेशकर आणि महेंद्र कपूरचं।

0: गूंज उठू शहनाई, विजय भट द्वारा दिग्दर्शित यात राजेंद्र कुमार, अनिता गुहा व अमिता, संगीतकार ते वसंत देसाई आणि गीतकार भरत व्यास. अखिया भूल गई है सोना, दिल पे किया है जादू टोना.
1: क्या हो गया है तुझे? अरे बेचारी के दिन का चैन, रातों की नींद हराम हो गई है. अखिया भूल गई है सोना, दिल पर हुआ है जादू टोना. हाय शहनाई वाले, हाय शहनाई वाले.

0: छोटे छोटे सपने हमार, छोटी आशा छोटा प्यार।
1: ए क्या अंग्रेजी बोलता है, सीधा साधा बोल।
2: अगर फिर कभी तुम फैक्ट्री में कदम रखा तो उनको बॉयलर में डाल देगा, तुम लोग पर इंजन चला देगा।
3: देखो काय लोग, देखो देखो तुम्हारा, देखो वो हराम को मुझे लात जूते से मारता रहा और तुम आकर खड़े हो गए। बस चुपचाप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन वो तुम लोगों को भी मारेगा, मैं भी ऐसे ही खड़ा हो जाऊंगा चुपचाप आकर। एक दिन वो तुम सबको नौकरी से निकाल देगा, तुम्हें खड़े होकर हटूंगा। उसने मुझे मारा और कोई बचाने भी नहीं आया, ठीक है। मार मार के लहू लुहान कर दिया सारे ने, काम भी किए जाओ और जूता भी खाए जाओ, ये इनाम मिला है 30 बरस की किस्मत का। देखा ए! हो ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे,
4: सोता है बहुत जागा है ना।
3: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है जो उसको

0: भोले वाले ललुआ, भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग जा भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, धरेगा विदेशी बाबू बही अतिहारी। थाम थाम थाम।

0: विश्वास आहे का जगभरात कुठेही आणि कधीही? त्यासाठी प्ले स्टोअर वरून किंवा ऍप स्टोअर वरून रेडिओ विश्वास हे ऍप डाउनलोड करा आणि सुमधुर संगीताबरोबरच आस्वाद घ्या दर्जेदार कार्यक्रमांचा. रेडिओ विश्वास, अभिजात संस्कृतीचा सुमधुर आवाज.
1: नाही, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता छाया, कुछ नहीं हो सकता. मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता जिसे लड़ने से पहले ही आदमी हार जाता है. मैं हार गया हूं छाया.
2: सुदीप.
1: हाँ छाया, लगता है यहां तो सिर्फ दूसरों के सर पे पांव रख के ही आदमी ऊपर चढ़ सकता है. सीधा रास्ता तो सिर्फ वहां जाता है जहां गुहा चला गया. इस शहर के लोग रोने के लिए कंधा नहीं देते, मरने तक इंतजार करते हैं कंधा देने के लिए.
2: मैं तुम्हारे साथ हूं सुदीप, तुम्हारे साथ छोटी सी खोली में भी अपना घर बसा लूंगी.
1: झूठे आदर्श की बात मत करो, चिढ़ होती है मुझे. घर बना लोगी, कपड़े के लीर का दिया जलाओगी और शाम को आधी सूखी रोटी खिलाकर सोचोगी कि हम लोगों ने घर बना लिया. हाथों में पेट लिए घूमोगी तुम और मैं पेट पे हाथ रखे घूमूंगा. इसे घर कहती हो तुम? नहीं छाया, बहुत देखा है ऐसे पीले चेहरों वाला आदर्श.
2: तुम निराश होगे सुदीप, मुझे विश्वास है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा.
1: हाँ, विश्वास, विश्वास, तुम्हें विश्वास है ना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा? है, एक रास्ता है. हाँ छाया, मैंने भी अपनी सीढ़ी चुन ली. मोदी.
2: मोदी?
1: तुमसे शादी करना चाहता है ना, कर लो शादी. समझने की कोशिश करो छाया, कितने दिन जिएगा और कितने दिन जी सकता है. हाँ छाया, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा. सिर्फ इसके बाद ही हम लोग अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं.
2: छे, किसी की कब्र पे अपना घर बनाऊंगी.